0: डार्लिंग डार्लिंग क्या बात है, तुम अब तक नहीं आए। कम सुन, देखो देखो देखो कितना अच्छा मौसम है, जल्दी आओ ना, प्लीज। शुकु शुकु प्लीज माय लव माय डार्लिंग माय पेट, ओह शुकु प्लीज कम सुन।
1: ओके वी लव यू।
2: Okay, we love you. Ooit op een rammelmarkt een reeks dvd's gekocht met allemaal Bollywood films. Ik heb van die films enkel de muziek afgehaald. En dit is er zo eentje van deze Om Shanti Om Degwani Degwani.

पहला ही अक्षर के मतलब है दिल लागल दिल लागल दिल लागल, दूसरा का मतलब इश्क हुआ, तीसरा

पिएंगे नाचेंगे खाएंगे डिस्को के धुन पर अपने प्यारी के साथ खूब नाच भी करेंगे।

0: ये देश का समाचार था। आप सुनिए, नाचिए, आओ मनोरंजन उठाइए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
1: De disco-versie van een Chutney Bomb, deze Elado remix by Disco Disco op een Maxi Baba Edits volume 1. Ah, Donna Summer. Disco, disco, disco.